0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: शिमाली कोरिया ने ऐलान किया है कि इसकी एटमी ताकत की हैसियत नाकाबिल वापसी और नाकाबिल समझौता है। शिमाली कोरिया के नायब वजीर खारजा किम सोंग ग्योंग ने अमरीका के शहर न्यूयॉर्क में मुनक़िद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। किम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शिमाली कोरिया नाकाबिल समझौता एटमी हैसियत का हामिल है और यह हैसियत किसी भी सूरत में वापस नहीं ली जा सकती। एक कुतबी आलमी निज़ाम के खात्मे पर जोर देते हुए किम ने अमरीका, जापान और जनूबी कोरिया के इलाके में मुश्तरक फौजी मशकों की मजम्मत की। उन्होंने दावा किया है कि जापान के हथियार जमा करने के इकदाम खत्ते को जंग की तरफ धकेल रहे हैं।
2: शुमाली अमरीका में तजारती जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कैनेडा से दरामद की जाने वाली बाज मसनूआत पर रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की नई पाबंदियों का फैसला निसफ शब से बाकायदा तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। व्हाइट हाउस की जानब से जारी करदा हुक्मनामे के मुताबिक इस दरामदी पाबंदी में कैनेडियन साख्ता अल्कोहलिक मशरूबात, राब, मोटरसाइकिलें और दूध की बाज़ ज़ेली मसनूआत शामिल हैं। अमरीकी इंतजामिया इसके अलावा कागज़, लकड़ी, एलमिनियम और फर्नीचर जैसी मसनूआत के ग्रुप्स पर इजाफी कस्टम ड्यूटी को भी बरकरार रखे हुए है। दूसरी जानब माहरीन का कहना है कि यह पाबंदी कैनेडा की मईशत को हिला देने वाली सतह की नहीं है और अमरीकी फरीक ने यह कदम तकनीकी खदशात के बजाय महज अपनी ताकत का मुजाहरा करने और कैनेडा के अज़्म का इम्तहान लेने की हिकमत अमली के तौर पर उठाया है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता साल 28 अरब डॉलर की मसनूआत पर आयद किए गए इजाफी टैक्सों से शुरू होने वाला यह बहरान फरीकैन के बाहमी जवाबी इकदाम के बायस मुसलसल बढ़ रहा है। जापान की मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक वस्ती टोक्यो में मंगल के रोज़ मुसलसल 34वें दिन भी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अब तक का तवील तरीन सिलसिला है। क्योदो न्यूज़ ने एजेंसी के हवाले से बताया कि जापानी दारुलहुकूमत में 27 अगस्त से रोज़ाना बारिश हो रही है और इस तवील बारिश के पीछे आने वाले तूफान एक जगह ठहरे हुए हैं। बताया गया है कि इसमें खिजा के बारानी निज़ाम और कम दबाव की लहर का हाथ है। इससे कबल मुसलसल बारिश का रिकॉर्ड 33 दिनों का था, जो 27 जून से 29 जुलाई 2019 के दरमियान दर्ज किया गया था। मौजूदा सिलसिले के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश 21 सितंबर को ही जब वस्ती टोक्यो में 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। क्योडो के मुताबिक पीर तक वस्ती टोक्यो में कुल बारिश 629 मिलीमीटर तक पहुंच गई, जो सितंबर के पूरे महीने की औसत बारिश से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा है। मंगल के रोज़ मशरकी और मगरबी जापान के काफ़ी हिस्सों में भी शदीद बारिश हुई। वस्ती जापान के सूबे फुकोई के शहर एचिजैन में मंगल की सुबह सवेरे 1 घंटे के अंदर 30 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश का यह तवील सिलसिला फौरी तौर पर ख़त्म होने की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खजा के निज़ाम में बारान के असरात के बायस बुनियादी तौर पर मशरकी जापान में जुमेरात के आसपास तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई है। जापान का यह निज़ाम आम तौर पर मुल्क में मौसमी हवाओं के बाहमी असरात की वजह से गैर मुस्तहकम मौसम का तवील दौरानिया लाता है। और ओपन एआई ने अपनी अगली नस्ल के मॉडल GPT-6.1 Astra को मंसूख कर दिया है, जो अक्टूबर में जारी किया जाने वाला था। कंपनी ने अंदरूनी जांच के दौरान पैदा होने वाले संगीन सिक्योरिटी खदशात के बाद इस रिलीज़ को वापस ले लिया। एस्ट्रा को चैट GPT और कोडेक्स में पेचीदा कामों के लिए तैयार किया गया था, लेकिन यह मुताबिकत के अहम तजुर्बात में नाकाम रहा। यह दावा ओपन एआई की सेफ्टी चीफ साची जीन का है, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से बात करते हुए ये मालूमात फराहम की। जीन का कहना है कि एस्ट्रा ने अपने सापका मॉडल के मुकाबले में ज़्यादा धोखादही पर मबनी रवैया दिखाया और बाज़ औक़ात अपने इकदामात को ज़ाहिर करने में नाकाम रहा। तजुर्बा करने वालों ने यह भी पाया कि उसने सारिफ की इजाज़त के बग़ैर काम किया और गैर मिजाज बैरूनी टूल्स को इस्तेमाल करने की भी कोशिश की। इसके साथ ही सदाए तुर्की से उर्दू में खबरें ख़त्म हुईं। یہ صدائے ترکی ہے اور لیجیے سامعین، اب ترک گلوکارہ ہندے ینر کی آواز میں ایک نغمہ سماعت فرمائیے۔

इथोपिया में साथ मसला मुखालिफ धड़ों का इथोपियन पीपल्स फोर्सेस अलायंस फॉर सर्वाइवल के नाम से यकजा होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुल्क में जारी सलामती का बहरान एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। अम्हारा फानो नेशनल मूवमेंट, टीग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और विमो लिबरेशन आर्मी और उसके साथ ओगादीन, अफार, बेंशा निगोल और गमूज के महवरों से ताल्लुक़ रखने वाले चार धड़ों को एक ही छतरी तले लाने वाले इस इत्तेहाद ने ऐलान किया है कि इसका हदफ अबी अहमद की हुकूमत को तब्दील करना और उसके बाद एक जामे उबूरी हुकूमत कायम करना है। और शाम के शुमाली और मशरक़ी अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर कान देवे जोलू का इस मौजू पर तजिया पेश खिदमत है। सामिन, इस पेशरफ की असल अहमियत साख मुख्तलिफ धड़ों की महज अददी तादाद से नहीं बल्कि उन सियासी मंसूबों के एक ही महाज पर इकट्ठे होने से है जिनका आपस में मेल खाना इंतहाई मुश्किल है। हम ऐसे अदाकारों की बात कर रहे हैं जो अभी कल तक मुख्तलिफ महाजों पर और बाज़ औक़ात बराह रास्त एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े थे। इसकी सबसे हैरान कुन मिसाल फानो और TPLF के ताल्लुकात हैं। 2020-2022 की टीग्रे जंग के दौरान फानो के अनासिर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर टीग्रे की अफवाज के खिलाफ लड़ रहे थे जबकि आज ये दोनों धड़े एक ही इत्तेहाद में शामिल हैं। मजीद ये कि अम्हारा और टीग्रे के फरीकैन के दरमियान मगरबी टीग्रे का मसला जैसे इंतहाई हसास सरहदी और इलाकाई तनाज़ात अब भी हल तलब हैं। इस नए इत्तेहाद का क़याम ये जाहिर नहीं करता कि ये इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं बल्कि इसके बरअक्स ये सोचने पर मजबूर करता है कि दोनों फरीकैन अब मौजूदा वफाकी हुकूमत को अपने लिए एक अव्वलीन और ज़्यादा बड़ा ख़तरा समझने लगे हैं। लिहाजा ये इत्तेहाद फ़िलहाल किसी मुश्तरका इथोपिया के तस्वुर के बजाय एक मुश्तरका ख़तरे के एहसास पर मबनी इत्तेहाद की हैसियत रखता है। ये पेशरफ बैक वक्त एक बार फिर यह साबित करती है कि इथोपिया की अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल को सिर्फ टीग्रे के मसले के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता। तवील अरसे से जारी और रोमोवोज मरकज पर मबनी मुसल्ला जद्दोजहद 2023 से अम्हारा के इलाके में शिद्दत इख्तियार करने वाली फानो और वफाकी हुकूमत की झड़पें और इर्द गिर्द के इलाकों के नस्ली और सियासी मुतालबात ने मुल्क के बहरान के नक्शे को कसीरुल हदफ बना दिया है। टीग्रे में हालिया झड़पें और जुलाई में TPLF की जानिब से प्रिटोरिया माहिदे को अमली तौर पर मुर्दा करार देना यकीनन एक संगीन ख़तरा है। ताहम ये नया इत्तेहाद वाज़े करता है कि यह इथोपिया की कमजोरियों का दायरा कार टीग्रे से कहीं ज़्यादा वसी है। यहाँ दूसरा अहम मसला बैरूनी अनासिर और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इलाकाई मसाबिकत है। मौजूदा खुले ज़राए ऐसे काफ़ी शवाहिद फराहम नहीं करते जो यह साबित कर सकें कि यह नया इत्तेहाद किसी बैरूनी ताकत की एमा पर कायम हुआ है। इसीलिए किसी बैरूनी स्पॉन्सरशिप का बराह रास्त ताल्लुक जोड़ना क़बल उस वक्त होगा। इसके बावजूद इथोपिया के अंदर मुसल्ला धड़ों की तकसीम और मरकज़ी हुकूमत के साथ उनके तनाज़ात की गहराई उन्हें खित्ते की रियासतों के दरमियान जारी मुसाबिकत में इस्तेमाल किए जाने के लिए साजगार बना रही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हालिया बरसों में बनने वाले बदलते हुए इत्तेहादों को मद्दनज़र रखा जाए तो इथोपिया के नस्ली, सियासी और यहाँ तक के मजहबी इख्तलाफात का बैरूनी मुसाबिकत के आलम में तब्दील हो जाना अदीस अबाबा के लिए एक ऐसा सिक्योरिटी रिस्क है जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मजीद बरआ ये पेशरफ एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इथोपिया में कौमी मुकालमा का अमल जारी है। नेशनल डायलॉग कमीशन का मौक़िफ़ है कि मुसल्लह ग्रोहों समेत तनाज़े के तमाम फरीकैन की मेज़ पर नुमाइंदगी होनी चाहिए और इसने 2026 के दौरान हथियार डालने वाले अम्हारा ग्रुपों के साथ मुज़ाकरात भी किए हैं। इसके बरअक्स इस अमल पर यह तनकीद भी जारी है कि ये अहम मुसल्लह और सियासी अदाकारों को खातिर ख्वाहत तक शामिल करने में

सामिन चिपकने वाली चीज़ें जो एक अहम ज़िंदगी बचाने वाले हैं जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, इनकी एक तवील तारीख है। साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि बहुत से मुख्तलिफ कुदरती मवाद से तैयार करदा चिपकने वाली चीज़ें इंसानी तहजीब में तकरीबन 6,000 साल से मौजूद हैं। चिपकने वाली चीज़ें जो टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ रोज़ बरोज़ तैयार हो रही हैं, अब मस्नूई मवाद से तैयार की जाती हैं। आज इस्तेमाल होने वाले सुपर ग्लू की तारीख सिर्फ 80 साल पुरानी है। सामिन साल था 1942। दूसरी जंग अजीम अपने तमाम तर तशद्दुद के साथ जा रही थी, खासतौर पर यूरोपी बरआज़म और बहरुल काहिल में। उस वक्त अमरीका में तकरीबन तमाम कारखाने फौजी सनत पर मरकूज थे और पूरी तनदही से अमरीका और उसके इतिहादियों के लिए फौजी मवाद तैयार कर रहे थे। कीमियादान हैरी वेजली कूवर, जो इन कंपनियों में से एक में काम करता था, उनका सिर्फ एक ही मकसद था, मैदान जंग में फौजियों को वाज़े नज़ारा फराहम करने के लिए आसानी से ले जाने वाली प्लास्टिक की दूरबीन तैयार करना था। उसके काम के नतीजे में एक ऐसी मसनूअत तैयार की गई जिसने उनको कभी भी तवक्को नहीं हुई, लेकिन जिससे उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, और वो थी सुपर ग्लू। हैरी वेजली कूवर ने एक नया कीमियाई मवाद बनाया जिसे बाद में उन्होंने अपनी तहकीक के दौरान साइनो एक्रिलेट का नाम दिया। उन्होंने इस मवाद से दूरबीन और नज़ारे बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह मवाद बहुत चिपचिपा और जल्द खुश्क हो जाता था। कूवर जो बहुत परेशान और गुस्से में थे कि उनकी तहकीक से वो नतायज बरामद नहीं हुए जो वो चाहते थे, इस चिपचिपा मवाद को एक तरफ उन्होंने फेंक दिया और 10 साल तक इसके बारे में भूल गए, यहाँ तक कि उन्होंने जेट से चलने वाले लड़ाका तैयारों के पायलट डिपार्टमेंट में नई नौकरी भी शुरू कर दी। कूवर को एक पायदार किस्म की प्लास्टिक की जरूरत थी ताकि कनोपी नामी कोट जो जेट लड़ाका तैयारों के पायलट सेक्शन का अहाता करता है हवाई जहाज के जिस्म पर मजबूती से चिपक जाए और हवा से मुतासर ना हो। उन्होंने अपने पुराने काम के बारे में सोचा। 10 साल से अपने दफ्तर में काबीना के शेल्फ पर उसकी किस्मत का इंतजार कर रहे थे। बदकिस्मती से यह मादा जो हवा में नमी की वजह से उसके रबते में आने वाली हर चीज से चिपक जाता है, इस काम के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन कूवर ने इत्तफाक से महसूस किया कि उसने जो नया मादा तैयार किया है उसे मजबूती के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बार उसे एक तरफ फेंकने के बजाय चिपकने वाली अमरीकी मोजत ने अपने तैयार करदा सुपर ग्लू को 1956 में पेटेंट करवाया और उसे 1958 में ईस्टमैन 910 के नाम से मार्केट में लाया गया। लेकिन जब यह नाम सार्फिन की तवज्जो हासिल ना कर सका तो उन्होंने नाम बदलकर सुपर ग्लू कर दिया और उसकी फरोख्त मुल्क में अचानक धमाका बन गई।